0: भौजी बहुत टेंशन में छे, की भ गेल?
1: की हेतै देखू ना, केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलकै जे नोट कसते कसते सब टूट गेल।
0: सुनू, जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटे छे, खरीद के आन लिया आ वही ठाम सब सामान भेटे छे।
1: ओतो की सब तैयार करै छे यो?
0: बॉक्स पलंग, थ्री पीस आ टू पीस दराज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, अलना, ड्रेसिंग टेबल, बाघ पंजा सोफा सेट।
2: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाय छे।
3: 5x6 फीट के फुल बुट्टा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जायत।
0: संगे मॉडल किचन खरात कार्विन के व्यवस्था छे। पलाय, फर्मेका, रेडीमेड ढोका, हैंडल, हत्था, कांटी, कब्जा, स्प्रिट, चपरा आ शीशा लगायत फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध है।
2: प्रोपराइटर शंभू सुथियार।
0: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स, राजविराज 1, कंचनपुर रोड, नहर चौक, चूड़ा मिल के बगल में।
2: मोबाइल
0: 9807040070 आ 9628866270।
4: फिरता फिरता 20% समस्या सुफिरता सहीले पानी चाह पानी
5: कैश फिरता लिनु भएता
6: एनसेल पैक किन्नु भएता जहिले पनि जहाँ पनि पैक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भएता शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: आफ्नो कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: कतेक दर्द करै छै, ठेहुन भीने आ नस फुलि जाइ छै।
2: की भ गेला से?
1: ओ बौआ, नस फुलि गेलै आ ठेहुन के जोर से दर्द करै छै।
3: आप चिंता नहीं कर, चलो मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
2: डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियै।
4: रो आ हमर डाढ़ के नस बड़ दुखाइया बारे, ठीक भ जतै न?
2: पूरे ठीक भ जतै।
5: जी हाँ, हार जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS,
6: हर प्रकारक टूटल हड्डी।

0: ओढ़नाए प्लास्टर ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए
1: हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक से दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
0: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096। आप अपने निवास सप्तरी सेवा आश्रम वेटनरी अस्पताल सब पश्चिम 24 घंटा लैब आ फार्मेसी सुविधा के साथ सेवा दर आल अच्छा।

0: Media and Extreme Energy Drink.
1: राजविराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
2: जो एहन कोनो समस्या अछि तो निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
1: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
2: फोन नंबर 9800118978।
3: फिरता 20% समस्या सफिरता सहीले पनि चाह पनि
4: क्याश फिरता लिनु भए त
5: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: कुलो एल्को दुई मिनट को मालिश ले रख्छ तपाईलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: रंग बहार रंग बहार
2: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्परमा यामाहा रेजियर
1: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कुटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनुहोस्।
2: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजरेटर, वासिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरू पनि। घर रंगाऊ, खुशी बनाऊ, उपहार जित्ने अवसर पाऊ।
1: बर्जर पेन्स।
3: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
4: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि, ताहि एहन अवस्था में जर एनाय, उल्टी जकाँ लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
3: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागे से बचाव वाला उपाय सब,
4: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ,
3: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए,
4: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए,
3: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए,
4: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ,
3: बाहर जाइए परत छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए,
4: खाली पेट बाहर नहीं जाओ,
3: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए,
4: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए तो स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाए। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज में चल रहा है। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
2: ये सुनू
3: की कहे छे
2: हम जाय छी तिरुपति ट्रेडर्स में वही ठाम सीजन अनुसार के सब ब्यू विजन भेटे छे खरीद लेबे आ चल एबे
3: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे
2: हेते
0: तिरुपति ट्रेडर्स राज विराज।
4: जी हाँ एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है।
3: चप्पल बनाबे वाला मशीन
4: मुर्गा दाना बनाबे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब
3: पावर ट्रेलर
4: थ्रेसर
3: रोटावेटर
4: कम्पाइन धान आ गहूँ काटे वाला मशीन
3: रोपे वाला मशीन
4: स्प्रे मिल सेट जेनरेटर
3: कृषि औजार स्पेयर पार्ट्स
4: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध है।
0: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स कंचनपुर रोड राजविराज 8
4: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव
0: मोबाइल
4: 9807788897 आ 9847452178।
3: ये दीदी देह भारी छे आ डाँर पीठ से दुखाइए कौन उपाय करबे
5: बहुत पुरान आ अनुभवी छे डॉक्टर दिलीप कुमार सा अपने घर में सेवा दे रहल छे चलू न ओते जांच करा दे छी।
4: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथा अंचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार सा टीचिंग अस्पताल काठमांडू MD
5: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करत है
4: सेवा असुविधा सब
5: बच्चादानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा
6: गर्भवती महिला जांच
5: स्त्री रोग
6: लिकोरिया महीनावारी गड़बड़ी
5: पीठ आ डाँर दुखेनाई
6: पेशाब जलन
5: मांस बढ़नाई
6: निसंतान दंपति के परीक्षण
5: IUI सेवा
6: वीडियो एक्सरे
4: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध है
6: अवश्य सेवा के मौका देल जाए।
4: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार सा राजविराज हनुमान नगर रोड साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड
6: मोबाइल
4: 9861 77985 आ 9917 89133।

0: सौ प्याकेट भित्र रहेका कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचाउ सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: ये दिदी देह भारी छे आ डाँर पीठ से दुखाइए, कोन उपाय करबै?
3: बहुत पुरान आ अनुभवी छे डॉक्टर दिलीप कुमार सा अपने घर में सेवा दे रहल छे, चलू न ओते जांच करा दे छी।
4: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथा अंचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार सा टीचिंग अस्पताल काठमांडू MD
3: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करैत अछि।
4: सेवा आ सुविधा सब
3: बच्चा दानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा,
5: गर्भवती महिला जांच, स्त्री रोग, लिकोरिया, महिनावारी गड़बड़ी, पीठ आ डाँर दुखेनाय, पेशाब जलन, मांस बढ़नाय, निसंतान दंपति के परीक्षण,
3: IUI सेवा,
5: वीडियो एक्सरे,
4: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध
5: अवश्य सेवा के मौका देल जाए।
4: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार सा राजविराज हनुमान नगर रोड साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड।
5: मोबाइल
4: 9861 77985 आ 9871 79133।

0: Extreme Energy Drink.
1: ये सुनो
2: की कहे छे
1: हम जाय छी तिरुपति ट्रेडर्स में वही ठाम सीजन अनुसार के सब ब्यू विजन भेटे छे खरीद लेबे आ चलि एबे
2: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे
1: हेते
3: तिरुपति ट्रेडर्स राज विराज
4: जी हाँ एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है
2: चप्पल बनाबे वाला मशीन
4: मुर्गा दाना बनाबे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब
2: पावर ट्रेलर
4: थ्रेसर
2: रोटावेटर
4: कंपाइन धान आ गहूम काटे वाला मशीन
2: रोपे वाला मशीन
4: स्प्रे मिल सेट जेनरेटर
2: कृषि औजार स्पेयर पार्ट्स
4: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध है
3: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स कंचनपुर रोड राजविराज 8
4: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव
2: मोबाइल
4: 9807788897 आ 9847552178
5: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz

0: এখন ভড়কওয়া এফএম দিনকে ন বাজল বাইরকে মৌসম মে সতর্ক রহু আ সুরক্ষিত রহু বাইর কোনো বখত আইব সকেত আছে তাই প্রতিকার্য কে লেল তৈয়ার রহু
1: জল তথা মৌসম বিজ্ঞান বিভাগ ডিএইচএম দ্বারা নেপাল কে বিভিন্ন ভাগ মে ঔসত সে বেশি বর্ষা হবাক পূর্ব অনুমান কেল গেল আছে যেই কারণ বাড় আ কটান কে জোখিম বড় সকেত আছে
0: সতর্ক রহি কা আবশ্যক জানকারী প্রাপ্ত করু আ স্থানীয় সূচনা সব কে পালন করু আহা কে সুরক্ষা अही के जानकारी पर निर्भर है
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग वडा कार्यालय स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सब प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिए
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बसोबास कर रहल छी त सुरक्षित आश्रय स्थल या उच्चगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल त देर नै क तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट मोबाइल फोन चार्जर दवाई सूखा खाए वाला सामान सफा पीबा वाला पानी नगद रुपया नागरिकता पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लो जा सके वाला स्थान में राखू
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू संभव अछि त बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उच्चगर स्थान में लो जाओ
1: दूसरों के मदद करू बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू गर्भवती सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माई के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित सर्पी के प्रबंध करू
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू ई सूचना परिवार पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ
1: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाए ऐसे पहिने तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कैल गेल अछि चेतावनी सुनो तुरंत निर्णय लिया आ सुरक्षित रहू
2: सम्पूर्ण सुविधा से सम्पन्न यूनिक अस्पताल रायपुर रूपनी आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज
3: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरन वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि
2: एहिठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि
4: सेवा आ सुविधा सब
3: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
4: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
3: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
2: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी केबिन के सुविधा है
4: संपर्क कैल जाए
3: यूनिक अस्पताल रूपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक
4: फोन
3: 031-35-7-76
4: मोबाइल
3: 9805-60-800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56-205 9805-56-202
5: फिरता फिरता 20% समकेश फिरता
6: सहले पानी चाहा पानी
7: कैश फिरता लिनु भएता
8: एनसेल पैक किन्नु भएता जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल पैक किन्नु भएता शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि

0: नवरत्न कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: एकटा खुशी के खबर छौ।
2: कथि छौ? से
1: विदेश से छुट्टी में आयल आदमी सब के श्रम स्वीकृति के काम अब राज विराज में चालू भ गेल छी। आंख के फोटो आ फिंगरप्रिंट के लेल कतो बाहर नहीं जा पड़तो।
3: जी हाँ, अली कम्युनिकेशन
4: एठम विदेश जवाक लेल श्रम स्वीकृति के काम, देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज, भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग,
3: विदेश जवाक लेल ओरिएंटेशन कक्षा, मेडिकल जांच, कतार आ दुबई के लेल विजिट वीसा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबाक लेल कुरियर सेवा उपलब्ध अछि।
4: नया पासपोर्ट बनेबाक लेल ऑनलाइन केनाई आ विदेश जाय वाला के लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाई के संगे हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि।
3: संपर्क
4: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स, चतुर्भुज मार्केट, मेन रोड, लोहार गली, राजविराज 4, सप्तरी।
3: फोन
4: 0315325575।
3: मोबाइल
4: 9815024475।
5: रंग बहार रंग बहार
6: बर्जर संगे उपहार उपहार बम्परमा यामाहा रेजियर
5: बर्जर पेन्सले घर रंगाउनु होस् र लकी ड्र मार्फत यामाहा रेजियर 125 स्कूटर बम्पर उपहार जित्ने मौका पाउनुहोस्।
6: साथै 65 इन्चको स्मार्ट टिभी, रेफ्रिजरेटर, वाशिङ मसिन लगायत 350 भन्दा बढी आकर्षक उपहारहरु पनि। घर रंगाऊ, खुशी बनाऊ, उपहार जित्ने अवसर पाऊ।
5: बर्जर पेन्सले।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजबिराज में चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
2: अपने साथ रहती बोरकवा।

0: दुखाइए कोन उपाय करबै? बहुत पुरान आ अनुभवी छे डॉक्टर दिलीप कुमार साह, अपने घर में सेवा दे रहल छे, चलू न ओते जांच करा दे छी।
1: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथांचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार साह टीचिंग अस्पताल काठमांडू MD
0: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करैत अछि।
1: सेवा आ सुविधा सब
0: बच्चा दानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा, गर्भवती महिला जांच, स्त्री रोग, लिकोरिया, महीनावारी गड़बड़ी, पीठ आ डाँड दुखेनाय, पेशाब जलन, मांस बढ़नाय, निसंतान दंपति के परीक्षण, IUI सेवा, वीडियो एक्सरे,
1: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध अछि।
0: अवश्य सेवा के मौका देल जाय।
1: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार साह, राजविराज, हनुमान नगर रोड, साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब, छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड।
0: मोबाइल
1: 9861 77985 आ 9817 89133।

0: এখন ভড়কবা এফএম মা দিনকে 10 বাজল রাজবিরাজ মে আপ সব প্রত্যেক দিন বরিষ্ঠ ছালা যৌন রোগ তথা সৌন্দর্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রঞ্জু পোখরেল এমবিবিএস এমডি ডার্মাটোলজিস্ট দ্বারা যাচ ইলাজ ভ রহল আছে
1: জ এহেন কোন সমস্যা আছে তো নিক আ প্রভাবকারী ইলাজ কে লেল अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करो।
0: याद रखो सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9890811978।
2: फिरता फिरता 20% समकेस फिरता सहले पानी जहाँ पानी
3: कैश फिरता लिनु भाई ता
4: एनसेल पैक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल पैक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि

0: कुलोइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: कतेक दर्द करै छे, ठेहुन भीने आ नस फुलि जाइ छे।
2: की भ गेला से?
1: ओ बुआ, नस फुलि गेलै आ ठेहुन के जोड़ से दर्द करै छे।
3: आप चिंता नहीं कर, चल मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
2: डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियो।
4: एरो आ हमारे डाल का नस बड़ दुखाइया बारे, ठीक भ जतै न?
2: पूरे ठीक भ जतै।
5: जी हाँ, हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS।
6: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए, प्लास्टर, ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए।
5: हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिधिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक से दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
6: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096।
7: आप अपने निवास सप्तरी सेवा आश्रम वेटनरी अस्पताल से पश्चिम 2400 घंटा लैब आ फार्मेसी सुविधा के साथ सेवा दर आल।

0: Media Extreme Energy Drink.
1: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
2: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चल वाला समय अछि। ताइ एहन अवस्था में जर एनाय, उल्टी जकाँ लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
1: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागत से बचे वाला उपाय सब
2: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
1: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
2: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
1: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
2: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
1: बाहर जाइए परत छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
2: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
1: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
2: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाएत अछि तऽ स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाएत अछि। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
3: अपने साथ रहती बोरकबा।

0: बाढ़ के मौसम में सतर्क रहू आ सुरक्षित रहू। बाढ़ कोनो बखत आबि सकैत अछि, ताई प्रतिकार्य के लेल तैयार रहू।
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्व अनुमान कयल गेल अछि, जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकैत अछि।
0: सतर्क रह कर आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहाँ के सुरक्षा अहीं के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सब प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिय।
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू। नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बसोबास कर रहल छी त सुरक्षित आश्रय स्थल या उच्चगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू।
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल त देर नै क तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू।
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाई, सूखा खाए वाला सामान, सफा पीबा वाला पानी, नगद रुपया, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू। झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँच वाला आ तुरंत लौ जा सके वाला स्थान में राखू।
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू, संभव अछि त बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उच्चगर स्थान में लौ जाओ।
1: दोसरो के मदद करू, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू। गर्भवती, सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माय के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू। ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू।
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू। ई सूचना परिवार, पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ।
1: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाए ऐसे पहिने तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ।
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाई ग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कयल गेल अछि।
2: चेतावनी सुनू, तुरंत निर्णय लिया, असुरक्षित रहू।

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: अपने साथ जरूर रहिए, बोलो कुमार।

0: एखन भोरकवा एफएम में दिन के 11 बाजल।
1: सम्पूर्ण सुविधा सँग सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज
2: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
1: एहिठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
3: सेवा आ सुविधा सब
2: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
3: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
2: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
1: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी केबिन के सुविधा है।
3: संपर्क कैल जाए
2: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
3: फोन
2: 031-5370-76
3: मोबाइल
2: 98015-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 98015-56205 98015-56202।
4: फिरता फिरता 20% समकेश फिरता सहेले पानी चाहा पानी
5: कैश फिरता लिनु भए त
6: एनसेल पैक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: आफ्नो कुल ओइलको 2 मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर 1 कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरीको जरुरी सूचना।
2: सप्तरी जिल्ला भित्र नगरपालिका आ गाउँपालिकामे जापानिज इन्सेफ्लाइटिस मस्तिष्क के जर बोखार मच्छर काटला से भ रहल छे। ई रोग संक्रमित मच्छर के कटला से पटै छे। ई रोग कोनो भी उमेर समूह के व्यक्ति में लाग सकै छे।
1: 15 वर्ष से कम उमेर रहल बाल बालिका में रोग देखल जाय छे।
2: ई रोग हाँस मुर्गी पंछी सुगर बंगुर से मच्छर में आ आदमी में रोग लागे छे।
1: ई रोग के प्रकोप खास करके सौन महीना से कार्तिक महीना धर रहे छे। ई रोग के लक्षण सब
2: कोनो भी व्यक्ति के उच्च बुखार लगनाय, मथा दुखेनाय, बेहोश होनाय, कंठ कड़ा भेनाय, शरीर कपनाय, एहन रोग देखला पर तुरंत नजदीक रहल स्वास्थ्य संस्था में संपर्क करू। समय पर इलाज नहीं कैल गेल त बिरामी के मृत्यु भ सकै छे।
1: ई रोग से बचबाक उपाय सब
2: मच्छर कटनाय से बचू। घर से बाहर गेला पर वा खेत बारी में काम करै बखत समूचा शरीर झांपल कपड़ा पहिरू।
1: सब दिन झूल भीतर सुतू। हाँस मुर्गी सुगर बंगुर घोड़ा जेहन घर पलुआ जानवर आ पंछी के घर से दूर व्यवस्थित रूप से पालन करू। घर के झाल ढोका में जाली लगाबू।
2: घर के अगल बगल सफा राखू। अनावश्यक झाड़ पात सफा करू आ पानी के झाप कर राखू। पानी जमल जगह के माटि से भरू।
1: ई रोग से बचबाक लेल 12 महीना के उमेर में जे ई विरोध खोप अनिवार्य लगाबू।
2: यदि समुदाय में कोनो बाल बालिका के खोप छूटल हो त 5 वर्ष के उमेर में सेहो लगा सकै छी। विशेष जानकारी के लेल स्वास्थ्य संस्था में संपर्क करू।
1: अनुरोध करता
2: स्वास्थ्य कार्यालय सप्तरी।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजबिराज में चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
2: पहिले सुन्दै हुनुहुन्छ भोरुकको एफएम 92.8 मेगाहर्जमा।

नवरत्न कुल ओइल को दुई मिनट को मालिश ले रख्छ तपाईलाई कुल दिलाउँछ गर्मी टाउको दुखाई थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल चिसो चिसो कुल कुल

0: Mania and Extreme Energy Drink.
1: 에컨 아프네 섭신 전체 부르크바 FM 92.8 MHz.

0: आफ्नो कुल ओइलको 2 मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर 1 कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: यही सुनो
2: के कहै छे,
1: हम जाइ छी तिरुपति ट्रेडर्स में, ओइ ठाम सीजन अनुसार के सब ब्यू बिजन भेटै छे, खरीद लेबे आ चलि अबे।
2: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे
1: हेतै।
3: तिरुपति ट्रेडर्स राजविराज।
4: जी हाँ, एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है।
2: चप्पल बनाबे वाला मशीन,
4: मुर्गा दाना बनाबे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब,
2: पावर ट्रेलर,
4: थ्रेसर,
2: रोटावेटर,
4: कम्पाइन, धान आ गहूम काटे वाला मशीन,
2: रोपे वाला मशीन,
4: स्प्रे, मिल सेट, जेनरेटर,
2: कृषि औजार, स्पेयर पार्ट्स
4: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध है।
3: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स, कंचनपुर रोड, राजविराज 8,
4: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव।
3: मोबाइल
4: 9807788897 आ 9807452178।
5: अपने साथ रहिए बोलकबा।

0: এখন ভরকা এফএম মা দিনকে এক বাজল राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जो एहन कोनो समस्या अछि तो निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9800 11 978।
2: फिरता फिरता 20% समकेस फिरता सहिले पनी चाहा पनी
3: क्याश फिरता लिनु भए त
4: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

191 बाट सम्मानित बजरंग स्टील को टीएमटी छड़ आईबी एंगल चैनल प्रयोग शताब्दी ढुक्क हो बजरंग स्टील शक्ति को नया अवतार।

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
3: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि। ताई एहन अवस्था में जर एनाई, उल्टी जका लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
2: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागे से बचाव वाला उपाय सब
3: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
2: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
3: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
2: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
3: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
2: बाहर जाइए पर छत्ता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
3: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
2: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
3: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए तो स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाए। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
4: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: प्याकेट भित्र रहेका कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचाउ सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: अहाँको गहना बडा सुन्दर यो डिजाइनो नयाँ कता बनेलिए?
3: ये काव्या ज्वेलर्स राजविराज म बनेलिए। ओतः आधुनिक डिजाइन का सोना चांदी का गर गहना ऑर्डर बमोजिम का गहना गारंटी के साथ बनबै छी आ नवग्रह का पत्थर सेहो भेटै छै।
4: काव्या ज्वेलर्स राजविराज साथ मेन रोड अदालत के पूर्व प्रोप्राइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह। मोबाइल 98 97 40 445।
5: सम्पूर्ण सुविधा सह सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
6: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, वीर अस्पताल काठमांडू, एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
5: एहिठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
2: सेवा आ सुविधा सब
6: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा, ओपीडी, मेडिसिन सेवा,
2: ऑपरेशन सेवा, चर्म रोग, हार्ट जर्नी, डायबिटीज,
6: होल बॉडी जांच, सीटी स्कैन, आईसीयू, एनआईसीयू, ओटी,
5: डिजिटल एक्सरे, एसी, नॉन एसी केबिन के सुविधा है।
2: संपर्क कर जाए
6: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
2: फोन
6: 031-530-7076।
2: मोबाइल
6: 98015-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 98015-56205 98015-56202।
7: फिरता फिरता 20% समक्या सुफिरता जैले पनी चाहा पनी
8: क्याश फिरता लिनु भए त
9: एनसेल प्याक किन्नु भए त जैले पनी जहा पनी प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एप मा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुने छन्। एनसेल नेपालकै लागि।
2: यता कोनो सुविधा सम्पन्न जग्गा नै छै?
10: छैन त, कृष्णा पार्टी प्यालेस एन्ड लज राजविराज। ओइठाम हरेक शुभ कार्य, विवाह, मुण्डन, हरेक दृष्टिकोण सँ सुविधा सम्पन्न छै।
5: राजविराज के साथ कृष्णा पार्टी पैलेस नाम।
6: अपने शहर राजविराज में सुविधा संपन्न कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज।
5: हर एक शुभ कार्य, शुभ विवाह, उपनयन, मुंडन आ पार्टी के लिए सुविधा संपन्न
6: कृष्णा पार्टी पैलेस। एहिठाम आकर्षक सजावट सहित एसी, नॉन एसी, डीलक्स आ कॉमन रूम,
5: 24 घंटा बिजली सुविधा, स्वच्छ खाने पानी,
6: शांत वातावरण में विवाह स्थल, सेमिनार, तालीम हॉल के व्यवस्था है,
5: टेबल कुर्सी आ कैटरिंग के व्यवस्था।
6: बुकिंग के लिए संपर्क करी कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज, 33 गाछी राजविराज, सप्तरी।
5: मोबाइल
6: 98047-48454 आ 98428-22430।

0: नवरत्न कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: एकटा खुसीको खबर छौ।
2: कथि छौ?
1: विदेश से छुट्टी में आयल आदमी सबके श्रम स्वीकृति के काम अब राज विराज में चालू भ गेल छी। आँख के फोटो आ फिंगरप्रिंट के लेल कतौ बाहर नहीं जा पड़तौ।
3: जी हाँ, अली कम्युनिकेशन
4: एहिठाम विदेश जेबाक लेल श्रम स्वीकृति के काम, देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज, भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग,
3: विदेश जेबाक लेल ओरिएंटेशन कक्षा, मेडिकल जांच, कतार आ दुबई के लेल विजिट वीजा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबाक लेल कुरियर सेवा उपलब्ध अछि।
4: नया पासपोर्ट बनेबाक लेल ऑनलाइन केनाइ आ विदेश जाय वालाक लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाय के संगे हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि।
3: संपर्क
4: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स, चतुर्भुज मार्केट, मेन रोड, लोहार गली, राज विराज 4, सप्तरी।
3: फोन
4: 0315325575।
3: मोबाइल
4: 9801502475।

0: Mania.
1: Extreme energy drink.
2: अपने साथ जुड़ रही थी बोरकुबा एफएम।

0: এখন ভড়কমা এফএম ম দিনকে দু বাজল বাইর কে মৌসম মে সতর্ক রহু আ সুরক্ষিত রহু বাইর কোনো বখত আইব সকেত আছে তাই প্রতিকার্য কে লেল তৈয়ার রহু
1: জল তথা মৌসম বিজ্ঞান বিভাগ ডিএইচএম দ্বারা নেপাল কে বিভিন্ন ভাগ মে ঔসত সে বেশি বর্ষা হবাক পূর্ব অনুমান কেল গেল আছে যেই কারণ বাইর আ কাটান কে জোখিম বড় সকেত আছে
0: সতর্ক রহি কা আবশ্যক জানকারী প্রাপ্ত করু আ স্থানীয় সূচনা সব কে পালন করু আহা কে সুরক্ষা अही के जानकारी पर निर्भर है
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग वडा कार्यालय स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सब प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिया
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बसोबास कर रहल छी त सुरक्षित आश्रय स्थल या उच्चगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल त देर नहीं कर तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट मोबाइल फोन चार्जर दवाई सूखा खाए वाला सामान सफा पीबा वाला पानी नगद रुपया नागरिकता पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लो जा सके वाला स्थान में राखू
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू संभव अछि त बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उच्चगर स्थान में लो जाओ
1: दूसरों के मदद करू बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू गर्भवती सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माई के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू ई सूचना परिवार पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ
1: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाए ऐसे पहिने तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कैल गेल अछि
2: चेतावनी सुनो तुरंत निर्णय लिया आ सुरक्षित रहू
3: फिरता फिरता 20% समस्या सुफिरता सहीले पानी चाह पानी
4: कैश फिरता लिनु भए त
5: एनसेल पैक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस् एनसेल पैक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि

0: नवरत्न कुल ओइलको 2 मिनटको मालिसले रक्ष तपाईँलाई कुल दिलाउँछ, गर्मी टाउको दुखाई थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर 1 कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जँ एहन कोनो समस्या अछि तऽ नीक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9807111978।
2: हे कनिया, अहाँ के गहना बड़ा सुंदर या डिजाइनो नया कतो बनेलिए?
3: ये काव्या ज्वेलर्स राज विराज में बनेलिए। आधुनिक डिजाइन का सोना चांदी का गर गहना ऑर्डर बमोजिम का गहना गारंटी के साथ बनबे छी आ नवग्रह का पत्थर सेहो भेटे छी।
4: काव्या ज्वेलर्स राज विराज 7 मेन रोड अदालत के पूर्व, प्रोप्राइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह। मोबाइल 9897404545।
5: भौजी, बहुत टेंशन में छे, की भ गेल?
2: की हेते देखू ना, केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलक है जे नोट कसते कसते सब टूट गेल।
5: सुनू, जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटे छे, खरीद के आन लिया आ वही ठाम सब सामान भेटे छे।
2: ओतो की सब तैयार करे छे यो?
5: बॉक्स पलंग, 3 पीस आ 2 पीस दराज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, अलना, ड्रेसिंग टेबल, बाघ पंजा सोफा सेट।
3: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कयल जाय छे।
5: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जायत। संगे मॉडल किचन खरात कार्विन के व्यवस्था छे। पलाई, फर्मेका, रेडीमेड ढोका, हैंडल, हत्था, कांटी, कब्जा, स्प्रिट, चपरा आ शीशा लगायत फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध अछि।
3: प्रोप्राइटर शंभु सुथियार।
5: जय श्री हनुमान ट्रेडर, राज विराज 1 कंचनपुर रोड, नहर चौक, चूड़ा मिल के बगल में।
3: मोबाइल
5: 9847404070 आ 9862886270।
6: फिरता फिरता 20% समकेश फिरता
7: सही पानी चाह पानी
8: कैश फिरता लिन भाईता
9: एनसेल पैक किन्नु भएता जहिले पनि जहाँ पनि पैक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिर्ता एनसेल एप मा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल पैक किन्नु भएता शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: रत्न कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले रक्ष तपाईँलाई कुल दिलाउँछ, गर्मी टाउको दुखाइ थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: कतेक दर्द करै छै, ठेहुन भीने आ नस फुलि जाइ छै।
2: की भ गेला से?
1: ओ बौआ, नस फुलि गेलै आ ठेहुन के जोड़ से दर्द करै छै।
3: आप चिंता नहीं करा, चल मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
2: डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे
4: छियौ। हमारे डाढ़ का नस बड़ दुखाई या बारे, ठीक भ जतै न?
2: पूरे ठीक भ जतै।
5: जी हाँ, हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS।
6: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए, प्लास्टर, ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए।
5: हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक से दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
6: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096।
7: आप अपने निवास सप्तरी सेवा आश्रम वेटनरी अस्पताल सब पश्चिम 2400 घंटा लैब आ फार्मेसी सुविधा के साथ सेवा दर आल।
8: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
6: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजविराज में चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश,
9: हिंदी फिल्म हनुमान अंश, सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
10: अपने साथ

0: Mania
1: Extreme Energy Drink.
2: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
3: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चल वाला समय अछि। ताइ एहन अवस्था में जर एनाय, उल्टी जकाँ लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
2: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लाग से बचे वाला उपाय सब
3: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
2: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
3: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
2: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
3: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
2: बाहर जाइए पर छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
3: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
2: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
3: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जायत अछि तऽ स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जायत अछि। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
4: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा।

0: आफ्नो कुल ओइलको दुई मिनटको मालिसले रक्ष तपाईँलाई कुल दिलाउँछ, गर्मी टाउको दुखाइ थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: कतेक दर्द करै छै, ठेहुन भीने आ नस फुलि जाइ छै।
2: की भ गेला से?
1: ओ बुआ, नस फुलि गेलै आ ठेहुन के जोड़ से दर्द करै छै।
3: आप चिंता नहीं करो, चलो मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
2: डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे
4: छियो। हमारे डाढ़ का नस बड़ दुखाइया बारे, ठीक भ जतै न?
2: पूरे ठीक भ जतै।
5: जी हाँ, हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS।
6: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए, प्लास्टर, ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए।
5: हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक से दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
6: मोबाइल 9847996749 आ 9817930096। आब अपने निवास सप्तरी सेवा आश्रम वेटनरी अस्पताल से पश्चिम 2400 घंटा लैब आ फार्मेसी सुविधा के साथ सेवा दर आल।

0: drip on ya. Extreme energy drink.
1: ये सुनो
2: की कहे छे
1: हम जाय छी तिरुपति ट्रेडर्स में वही ठाम सीजन अनुसार के सब ब्यू विजन भेटे छे खरीद लेबे आ चली आबे
2: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे
1: हेते
3: तिरुपति ट्रेडर्स राजविराज
4: जी हाँ एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है
3: चप्पल बनाबे वाला मशीन
4: मुर्गा दाना बनाबे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब
3: पावर ट्रेलर
4: थ्रेसर
3: रोटावेटर
4: कंपाइन धान आ गहूँ काटे वाला मशीन
3: रोपे वाला मशीन
4: स्प्रे मिल सेट जेनरेटर
3: कृषि औजार स्पेयर पार्ट्स
4: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध है
3: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स कंचनपुर रोड राजविराज 8
4: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव
3: मोबाइल
4: 9807788897 आ 9847552178
5: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz

0: এখন ভরকওয়া এফএম দিনকে চার বাজল
1: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
2: जँ एहन कोनो समस्या अछि त नीक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
1: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
2: फोन नंबर 9890811978।
3: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरिद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्यास फिर्ता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: de Ponia.
1: Extreme energy drink.
2: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: सम्पूर्ण सुविधा सह सम्पन्न यूनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
1: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
0: एहिठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
2: सेवा आ सुविधा सब
1: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
2: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
1: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
0: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी केबिन के सुविधा है।
2: संपर्क कर जाए
1: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
2: फोन
1: 031-530-7076
2: मोबाइल
1: 9801560800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9801-56205 9801-56202।
2: एता कोनो सुविधा संपन्न जगह नहीं छे।
3: छे ना तो कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज राजविराज ओइठाम हरेक शुभ कार्य विवाह मुंडन हरेक दृष्टि कोण से सुविधा संपन्न छे।
0: राजविराज के साथ कृष्णा पार्टी पैलेस नाम
1: अपने शहर राजविराज में सुविधा संपन्न कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज
0: हर एक शुभ कार्य शुभ विवाह उपनयन मुंडन आ पार्टी के लेल सुविधा संपन्न
1: कृष्णा पार्टी पैलेस एहिठाम आकर्षक सजावट सहित एसी नॉन एसी डिलक्स आ कॉमन रूम
0: 24 घंटा बिजली सुविधा स्वच्छ खाने पानी
1: शांत वातावरण में विवाह स्थल सेमिनार तालीम हॉल के व्यवस्था है।
0: टेबल कुर्सी आ कैटरिंग के व्यवस्था
1: बुकिंग के लिए संपर्क करी कृष्णा पार्टी पैलेस एंड लॉज 33 राजविराज 70
0: मोबाइल
1: 9847484 आ 9848222430।

0: कुलो एल्को दुई मिनट को मालिश ले रख्छ तपाईलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाई थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुलो एल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: एकटा खुशी का खबर छौ।
2: कथि छौ?
1: विदेश से छुट्टी में आयल आदमी सब के श्रम स्वीकृति के काम अब राज विराज में चालू भ गेल छी। आंख के फोटो आ फिंगरप्रिंट के लेल कतौ बाहर नहीं जाय पड़तौ।
3: जी हाँ, अली कम्युनिकेशन
4: एठम विदेश जवाक लेल श्रम स्वीकृति के काम, देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज, भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग,
3: विदेश सेवाक लेल ओरिएंटेशन कक्षा, मेडिकल जांच, कतार आ दुबई के लेल विजिट वीजा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबाक लेल कुरियर सेवा उपलब्ध अछि।
4: नया पासपोर्ट बनेबाक लेल ऑनलाइन केनाइ आ विदेश जाय वालाक लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाय के संगे हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि।
3: संपर्क
4: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स, चतुर्भुज मार्केट, मेन रोड, लोहार गली, राज विराज 4, 70।
3: फोन
4: 0315325575।
3: मोबाइल
4: 9805002475।

0: extreme energy drink.
1: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भरि मे करो मे सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज मे चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश,
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश, सब परिवार आबि देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
0: बाढ़ के मौसम में सतर्क रहू आ सुरक्षित रहू। बाढ़ कोनो बखत आबि सकैत अछि, ताहि प्रतिकार के लेल तैयार रहू।
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्वानुमान कयल गेल अछि, जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकैत अछि।
0: सतर्क रहि कऽ आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहाँ के सुरक्षा अहीं के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सब प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिअ।
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू। नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बसोबास कर रहल छी तो सुरक्षित आश्रय स्थल या उच्चगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू।
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल तो देर नहीं कर तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू।
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाई, सूखा खाए वाला सामान, सफा पीबा वाला पानी, नगद रुपया, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी अवस्था में राखू। झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लो जा सके वाला स्थान में राखू।
0: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू, संभव अछि तो बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उच्चगर स्थान में लो जाओ।
1: दूसरों के मदद करू, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू। गर्भवती, सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माई के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू। ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू।
0: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू। ई सूचना परिवार, पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ।
1: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाए ऐसे पहिने तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ।
0: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कैल गेल अछि।
2: चेतावनी सुनो, तुरंत निर्णय लिया आ सुरक्षित रहू।
3: फिरता फिरता 20% समस्या सुफिरता सहीले पनि चाह पनि
4: क्याश फिरता लिनु भए त
5: एनसेल प्याक किन्नु भए त जहिले पनि जहाँ पनि प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एपमा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भए त शर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: एक्सट्रीम एनर्जी ड्रिंक।
1: अपाङ्गता भेल व्यक्ति, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
2: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि, ताहि एहन अवस्था में ज्वर एनाय, उल्टी जकाँ लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
1: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागे से बचाव वाला उपाय सब,
2: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ,
1: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए,
2: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए,
1: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए,
2: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ,
1: बाहर जाइए पर छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए,
2: खाली पेट बाहर नहीं जाओ,
1: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए,
2: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए तो स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाए। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संघ सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
3: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जो एहन कोनो समस्या अछि तो निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करो।
0: याद रखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9890811978।
2: हे कन्या, अहाँ के गहना बड़ा सुंदर या डिजाइनो नया कत बने लिए?
3: ये काव्या ज्वेलर्स राज विराज में बने लिए। आधुनिक डिजाइन का सोना चांदी का गर गहना ऑर्डर बमोजिम का गहना गारंटी के साथ बनबे आ नवग्रह का पत्थर सेहो भेटे छे।
4: काव्या ज्वेलर्स राज विराज सात मेन रोड अदालत के पूर्व, प्रोपराइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह। मोबाइल 9897404545।
5: भौजी बहुत टेंशन में छे, की भ गेल?
2: की हेते देखू ना, केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलके जे नोट कसते कसते सब टूट गे।
5: सुनू, जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटे छे, खरीद के आन लिया आ वही ठाम सब सामान भेटे छे।
2: ओतो की सब तैयार करे छे यो?
5: बॉक्स पलंग, थ्री पीस आ टू पीस दराज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, अलना, ड्रेसिंग टेबल, बाघ पंजा सोफा सेट।
3: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाय छे।
5: 5x6 फीट के फुल बुट्टा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जायत। संगे मॉडल किचन खरात कार्विन के व्यवस्था छे। प्लाई, फॉर्मेका, रेडीमेड ढोका, हैंडल, हत्था, कांटी, कब्जा, स्प्रिट, चपरा आ शीशा लगायत फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध है।
3: प्रोपराइटर शंभु सुथियार।
5: जय श्री हनुमान ट्रेडर, राज विराज एक, कंचनपुर रोड, नहर चौक, चूड़ा मिल के।
3: राइटर शंभु सुथियार।
5: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स, राज विराज एक, कंचनपुर रोड, नहर चौक, चूड़ा मिल के बगल में।
3: मोबाइल
5: 9847040070 आ 9868686270।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भरि मे करो मे सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज मे चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश,
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश, सब परिवार आबि देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
2: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: Extreme energy drink.
1: ये सुनो
2: की कहे छे
1: हम जाय छी तिरुपति ट्रेडर्स में वही ठाम सीजन अनुसार के सब ब्यू विजन भेटे छे खरीद लेबे आ चलि अबे
2: एकटा रोटावेटर के ऑर्डर सेहो दे देबे
1: हेते
3: तिरुपति ट्रेडर्स राज विराज
4: जी हाँ एहिठाम विभिन्न प्रकारक औद्योगिक मशीन उचित दाम में उपलब्ध है
2: चप्पल बनाबे वाला मशीन
4: मुर्गा दाना बनाबे वाला मशीन आ माछ उत्पादन के लेल कृषि औजार सामान सब
2: पावर ट्रेलर
4: थ्रेसर
2: रोटावेटर
4: कम्पाइंड धान आ गहूम काटे वाला मशीन
2: रोपे वाला मशीन
4: स्प्रे मिल सेट जेनरेटर
2: कृषि औजार स्पेयर पार्ट्स
4: आ बोरिंग सामान संगे घर निर्माण आ हार्डवेयर संबंधी संपूर्ण सामान उपलब्ध है
3: तिरुपति ट्रेडर्स एंड सप्लायर्स कंचनपुर रोड राजविराज 8
4: प्रोप्राइटर अशोक कुमार यादव
2: मोबाइल
4: 9807788897 आ 9847552178
5: अपांगता भेल व्यक्ति बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही
6: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि ताई एहन अवस्था में जर एनाई उल्टी जका लगनाय थकान लगनाय बेसी प्यास लगनाय धड़कन बढ़नाय श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय अत्यधिक माथ दुखेनाय बेहोश भेनाय मांसपेशी सब दुखेनाय उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि
5: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागे से बचे वाला उपाय सब
6: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ
5: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए
6: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए
5: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए
6: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ
5: बाहर जाइए पर छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए
6: खाली पेट बाहर नहीं जाओ
5: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए
6: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाए
7: सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश
8: अपने साथ रहिए बोलक बा।

0: यो बाढीको मौसममा सजग हुनुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्। बाढी जुनसुकै बेला आउन सक्छ, प्रतिकारका लागि तयार रहनुहोस्। जल तथा मौसम विज्ञान विभाग डिएचएमले नेपालका अधिकांश भागमा औसतभन्दा बढी वर्षा हुने पूर्वानुमान गरेको छ, जसका कारण बाढी र पहिरोको जोखिम बढ्न सक्छ। सजग रही आवश्यक जानकारी लिनुहोस् र स्थानीय सूचनाहरूको पालना गर्नुहोस्। तपाईँको सुरक्षा यिनै कुरामा भर पर्छ।
1: बाढीको जोखिम भएमा यी उपायहरू अप्नाउनुहोस्।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग डिएचएम, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण सम्बन्धी जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाट प्राप्त बाढी सम्बन्धी जानकारी र चेतावनीहरूलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र त्यसअनुसार उपयुक्त कदम चाल्नुहोस्।
1: नजदिकका नदी र खोला नालामा पानीको सतह नियमित रूपमा अनुगमन गर्नुहोस्।
0: यदि तपाईँ नदी किनार वा बाढी प्रभावित क्षेत्रमा बस्नुहुन्छ भने सुरक्षित आश्रय स्थल वा उच्च स्थानहरू पहिचान गर्नुहोस् र त्यहाँ सुरक्षित तरिकाले निस्किन सकिने बाटोहरू खोज्नुहोस्।
1: चेतावनी जारी भएमा ढिलो नगरी तुरन्तै सुरक्षित स्थानमा जान तयार रहनुहोस्।
0: अत्यावश्यक सामग्रीहरू जस्तै टर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, औषधि, सुक्खा खानेकुरा, सफा पिउने पानी, नगद र परिचय खुल्ने कागजातहरू जस्तै नागरिकता, राहदानी वा अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रहरू एउटा झटपट झोलामा तयारी अवस्थामा राख्नुहोस्।
1: झटपट झोलालाई घरभित्र सजिलै देखिने र तुरुन्तै लैजान सकिने स्थानमा राख्नुहोस्।
0: आफ्नो सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नुहोस्। सम्भव भएमा बहुमूल्य वस्तु र चौपायाहरूलाई उच्च स्थानमा सार्नुहोस्। अरूलाई पनि मद्दत गर्नुहोस्। बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई आवश्यक सहयोग गर्नुहोस्। गर्भवती, सुत्केरी र स्तनपान गराइरहेका आमाहरूका लागि सुरक्षित बसोबासको व्यवस्था गर्नुहोस्। उनीहरूका लागि सकेसम्म छुट्टै र सुरक्षित शौचालयको प्रबन्ध मिलाउनुहोस्।
1: विपदपछि हुन सक्ने सर्पदंश तथा पानीजन्य संक्रामक रोगले निम्त्याउन सक्ने स्वास्थ्य जोखिमप्रति सचेत रहनुहोस्।
0: यो सूचना तपाईँका साथी, परिवार र छिमेकीहरूसँग पनि बाँड्नुहोस्।
1: बाढी ढोकामा आइपुग्नु अघि नै तयार रहौ, आजैदेखि सतर्क रहौ।
0: यो सन्देश अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र इसिमोड अन्तर्गतको हाई ग्रिड परियोजनाबाट अस्ट्रेलियन सरकार र सबल नेपालको सहयोगमा प्रसारण गरिएको हो।
1: चेतावनीहरू सुन्नुहोस्, द्रुत कदम चाल्नुहोस्, सुरक्षित रहनुहोस्।
2: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डाक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल है।
3: जो एहन कोनो समस्या अछि त निक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डाक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
2: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
3: फोन नंबर 9800 11978।
4: हे कनिया, अहाँ के गहना बड़ा सुंदर या डिजाइनो नया कत बनेलिए?
5: हे काव्या ज्वेलर्स राज विराज में बनेलिए। आधुनिक डिजाइन का सोना चांदी का गर गहना, ऑर्डर बमोजिम का गहना गारंटी के साथ बनबई छी आ नवग्रह का पत्थर सेहो भेटै छै।
6: काव्या ज्वेलर्स राज विराज 7 मेन रोड अदालत के पूर्व, प्रोप्राइटर सोनी कुमारी साह आ सुनील साह। मोबाइल 9817 40 445।
4: ये दीदी देह भारी छे आ डाँर पीठ से दुखाइए, कौन उपाय करबे?
7: बहुत पुरान आ अनुभवी छे डॉक्टर दिलीप कुमार साह अपने घर में सेवा दे रहल छे, चलू न ओते जांच करा दे छी।
8: अब अपने भवन राज विराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथांचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार साह टीचिंग अस्पताल काठमांडू MD
7: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करैत अछि।
8: सेवा आ सुविधा सब
7: बच्चादानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा, गर्भवती महिला जांच, स्त्री रोग, लिकोरिया, महीनावारी गड़बड़ी, पीठ आ डाँर दुखेनाय, पेशाब जलन, मांस बढ़नाय, निसंतान दंपति के परीक्षण, IUI सेवा, वीडियो एक्सरे,
8: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध है।
7: अवश्य सेवा के मौका देल जाए।
8: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार साह राजविराज हनुमान नगर रोड साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब। छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड।
7: मोबाइल
8: 9861-77985 आ 9871-79133।
9: कतेक दर्द करे छे ठेहुन भीने आ नस फूल जाय छे।
10: की भ गेला से?
9: ओ बुआ, नस फूल गेले आ ठेहुन के जोड़ से दर्द करे छे।
6: आप चिंता नहीं कर, चलो मंडल जी के क्लिनिक राजविराज में
10: डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल से जांच करा दे छियो।
7: एरो आ हमारे डाढ़ का नस बड़ दुखाइया बारे, ठीक भ जतै न?
10: पूरे ठीक भ जतै।
8: जी हाँ, हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल MBBS MS।
1: हर प्रकारक टूटल हड्डी जोड़नाए, प्लास्टर, ऑपरेशन आ नस रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि। संपर्क कैल जाए
8: हाड़ जोड़नी तथा नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रिद्धिनाथ प्रसाद मंडल, नर्मदा अर्थो केयर सेंटर, राजविराज, नेता चौक से दक्षिण, हीरा फार्मेसी।
1: मोबाइल 9847-96749 आ 9817-30096।
11: ओ मैंने तेरे ही भरोसे हनुमान सागर में नैया डारे दई।
1: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजविराज में चल रहल है। फिल्म हनुमान अंश,
3: हिंदी फिल्म हनुमान अंश, सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
12: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।

0: सम्पूर्ण सुविधा सँग सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज
1: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान वीर अस्पताल काठमांडू एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
0: एहिठाम महिला स्त्री एवं प्रसूति पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
2: सेवा आ सुविधा सब
1: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा ओपीडी मेडिसिन सेवा
2: ऑपरेशन सेवा चर्म रोग हार्ट जर्नी डायबिटीज
1: होल बॉडी जांच सीटी स्कैन आईसीयू एनआईसीयू ओटी
0: डिजिटल एक्सरे एसी नॉन एसी केबिन के सुविधा है।
2: संपर्क कैल जाए
1: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
2: फोन
1: 031-530-7076
2: मोबाइल
1: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205 9805-56202
3: फिरता फिरता 20% समक्या सुफिरता सहले पनी जहाँ पनी
4: कैश फिरता लिनु भायता
5: एनसेल पैक किन्नु भायता जहले पनी जहाँ पनी पैक खरीद गर्न होस अनि 20% समक्या सुफिरता एनसेल ऐप मा क्लेम गर्न होस एनसेल पैक किन्नु भायता सर्थहरु लागू हुनेछन् एनसेल नेपालकै लागि।

0: नवरत्न कुल ओइलको 2 मिनटको मालिसले राख्छ तपाईँलाई कुल, दिलाउँछ गर्मी, टाउको दुखाइ, थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम। नवरत्न वर्ल्ड नम्बर 1 कुल ओइल, चिसो चिसो कुल कुल।
1: एकटा खुसीको खबर छौ।
2: कथि छौ?
1: विदेश से छुट्टी में आयल आदमी सब के श्रम स्वीकृति के काम अब राज विराज में चालू भ गेल छी। आंख के फोटो आ फिंगर प्रिंट के लेल कतो बाहर नहीं जा पड़तो।
3: जी हाँ, अली कम्युनिकेशन
4: एठम विदेश जवाक लेल श्रम स्वीकृति के काम, देश विदेश के लेल हवाई टिकट बुकिंग आ टिकट के डेट चेंज, भारत के लेल रेलवे टिकट बुकिंग,
3: विदेश सेवा के लेल ओरिएंटेशन कक्षा, मेडिकल जांच, कतार आ दुबई के लेल विजिट वीसा एवं विदेश में चिट्ठी पत्र पठेबाक लेल कुरियर सेवा उपलब्ध अछि।
4: नया पासपोर्ट बनेबाक लेल ऑनलाइन केनाई आ विदेश जाय वाला के लेल राष्ट्रीय परिचय पत्र के फ्री ऑनलाइन फॉर्म भरनाई के संगे हरेक कंपनी के मोबाइल थोक दर में बिक्री आ मरम्मत करैत अछि।
3: संपर्क
4: अली कम्युनिकेशन एंड ट्रैवल्स, चतुर्भुज मार्केट, मेन रोड, लोहार गली, राजविराज 4, सप्तरी।
3: फोन
4: 031-532-575,
3: मोबाइल
4: 9805-02-475।

0: बाढ़ के मौसम में सतर्क रहू आ सुरक्षित रहू। बाढ़ कोनो बखत आबि सकैत अछि, ताई प्रतिकार्य के लेल तैयार रहू।
1: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग DHM द्वारा नेपाल के विभिन्न भाग में औसत से बेसी वर्षा होबाक पूर्व अनुमान कयल गेल अछि, जै कारण बाढ़ आ कटान के जोखिम बढ़ सकैत अछि।
0: सतर्क रहकर आवश्यक जानकारी प्राप्त करू आ स्थानीय सूचना सब के पालन करू। अहाँ के सुरक्षा अही के जानकारी पर निर्भर अछि।
1: बाढ़ के जोखिम भेला पर ई उपाय सब अपनावल जाओ।
0: जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, वडा कार्यालय, स्थानीय सरकार तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण संबंधी जिम्मेवार व्यक्ति सब प्राप्त बाढ़ संबंधी जानकारी आ चेतावनी के ध्यान पूर्वक सुनू आ तही अनुसार उपयुक्त निर्णय लिया।
1: नजदीक रहल नदी खोला में पानिक बहाव के नियमित रूप में अनुगमन करू। नदी किनार या बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में बसोबास कर रहल छी तो सुरक्षित आश्रय स्थल या उच्चगर स्थान में रहू आ सुरक्षित रूप से निकले वाला रास्ता बाट खोजू।
0: सूचना द्वारा चेतावनी जारी भेल तो देर नहीं को तुरंत सुरक्षित स्थान में जेबाक लेल तैयार रहू।
1: अति आवश्यक सामान जना कि टॉर्च लाइट, मोबाइल फोन, चार्जर, दवाई, सूखा खाए वाला सामान, सफा पीबा वाला पानी, नगद रुपया, नागरिकता, पासपोर्ट लगायत अन्य प्रमाण पत्र सब झटपट झोला में तैयारी।

0: व्यवस्था में राखू। झटपट झोला का घर भीतर जल्दी पहुँचा वाला आ तुरंत लौ जा सके वाला स्थान में राखू।
1: अपन संपत्ति के सुरक्षा करू, संभव अछि त बहुमूल्य सामान आ चौपाया के उचगर स्थान में लौ जाओ।
0: दोसरों के मदद करू, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अपंगता भेल व्यक्ति सब के आवश्यक सहयोग करू। गर्भवती, सुतकेरी आ स्तनपान करा रहल माई के लेल सुरक्षित वास के व्यवस्था करू। ओ सब के लेल सकभर अलगे आ सुरक्षित चर्पी के प्रबंध करू।
1: विपद के बाद होवा वाला सर्पदंश तथा पानी जन्य संक्रामक रोग के जोखिम रहला सँ सचेत रहू। ई सूचना परिवार, पड़ोसी आ जन समुदाय में जानकारी कराओ।
0: बाढ़ दरवाजा तक आबि जाए ऐसे पहिने ही तैयार रहू आ आइए से सतर्क भ जाओ।
1: ई संदेश अंतर्राष्ट्रीय एकीकृत पर्वतीय विकास केंद्र ईसी मोड अंतर्गत के हाईग्रिड परियोजना द्वारा ऑस्ट्रेलियन सरकार आ सबल नेपाल के सहयोग में प्रसारण कैल गेल अछि।
2: चेतावनी सुनो, तुरंत निर्णय लिया आ सुरक्षित रहू।

0: कुलोइलको दुई मिनटको मालिस लिएर छ तपाईँलाई कुल दिलाउँछ गर्मी टाउको दुखाइ थकान अनि अनिन्द्राबाट आराम नवरत्न वर्ल्ड नम्बर वन कुल ओइल चिसो चिसो कुल कुल
1: अपाङ्गता भेल व्यक्ति बाल बालिका ज्येष्ठ नागरिक आ बिरामी के विशेष ध्यान देबाक चाही।
2: आइ काल्हि अत्यधिक गर्मी आ गरम हवा चलो वाला समय अछि। ताइ एहन अवस्था में जर एनाय, उल्टी जका लगनाय, थकान लगनाय, बेसी प्यास लगनाय, धड़कन बढ़नाय, श्वास प्रश्वास में समस्या भेनाय, अत्यधिक माथ दुखेनाय, बेहोश भेनाय, मांसपेशी सब दुखेनाय, उल्टी भेनाय जेहन समस्या सब देखल जा सकत अछि।
1: गरम हवा के प्रभाव तथा लू लागत से बचे वाला उपाय सब
2: जूस शरबत आदि प्रशस्त मात्रा में पियल जाओ।
1: दिन भर प्रशस्त पानी आ झोर वाला चीज सब सेवन कैल जाए।
2: हल्का ढीला आ सूती के कपड़ा सब लगावल जाए।
1: संभवतः ठंडा स्थान में बैसल जाए।
2: दोपहर के समय में अनावश्यक घर से बाहर नहीं जाओ।
1: बाहर जाइए परत छाता टोपी चश्मा आ पंजा प्रयोग कैल जाए।
2: खाली पेट बाहर नहीं जाओ।
1: दोपहर के समय में कड़ा शारीरिक परिश्रम नहीं कैल जाए।
2: स्वास्थ्य संबंधी कोनो प्रकार के समस्या देखल जाए तो स्वास्थ्य कर्मी संग नियमित संपर्क में रह अनुरोध कैल जाए। सबल नेपाल आ समावेशी अपांग संग सप्तरीक साझेदारी तथा CBM ग्लोबल के सहयोग में संचालित अपांगता समावेशी विपद जोखिम न्यूनीकरण परियोजना द्वारा जनहित में जारी संदेश।
3: एखन अपने सब सुन रहल छी भोरकवा FM 92.8 MHz।
4: हमारे इस चैनल मैथिली गंगा को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त।

0: प्याकेट भित्र रहेका कुपनहरू हल्का प्लस रमाइलोलाई मिलाउनुहोस् र प्राप्त गर्नुहोस् एक प्याकेट मामा चाउचाउ सित्तैमा।
1: मामासँग हल्का रमाइलो।
2: सम्पूर्ण सुविधा सह सम्पन्न युनिक अस्पताल रायपुर रुपनी आ युनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
3: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान, वीर अस्पताल काठमांडू, एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
2: एहिठाम महिला, स्त्री एवं प्रसूति, पुरुष आ बाल रोग संबंधी जांच आ इलाज करैत अछि।
4: सेवा आ सुविधा सब
3: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा, ओपीडी, मेडिसिन सेवा,
4: ऑपरेशन सेवा, चर्म रोग, हार्ट जर्नी, डायबिटीज,
3: होल बॉडी जांच, सीटी स्कैन, आईसीयू, एनआईसीयू, ओटी,
2: डिजिटल एक्सरे, एसी, नॉन एसी केबिन के सुविधा है।
4: संपर्क कर जाए
3: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
4: फोन
3: 031-530-7076।
4: मोबाइल
3: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205 9805-56202।
5: फिरता फिरता 20% समक्या सुफिरता जैले पनी चाहा पनी
6: क्याश फिरता लिनु भाई ता
7: एनसेल पैक किन्नु भाई ता जैले पनी जहाँ पनी पैक खरीद गर्नु होस अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एप मा क्लेम गर्नु होस। एनसेल पैक किन्नु भाई ता सर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

शताब्दीसम्म ढुक्क हुनुहोस् बजरङ स्टिल, शक्तिको नयाँ अवतार।

0: Media, Extreme Energy Drink.
1: अपने साथ जुड़ रही थी बोरकुबा ये

नीलम दिशा हमर नमस्कार। दर्शक लोकन, एहि चैनल के सब्सक्राइब करबाक लेल लाल बटन का दबाओ आ तकर बाद घंटी पर क्लिक कके नव नव मैथिली गीतक आनंद उठाओ।

नीलम कैसेट्स दिशा हमर नमस्कार। दर्शक लोकन, एहि चैनल के सब्सक्राइब करबाक लेल लाल बटन का दबाओ आ तकर बाद घंटी पर क्लिक कके नव नव मैथिली गीतक

0: राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जँ एहन कोनो समस्या अछि तऽ नीक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9800111978।
2: सम्पूर्ण सुविधा से सम्पन्न यूनिक अस्पताल रायपुर रूपनी आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज।
3: अब बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरन, वीर अस्पताल काठमांडू, एम्स अस्पताल दिल्ली के दक्ष एवं अनुभवी विशेषज्ञ डॉक्टर सब द्वारा हर प्रकारक रोग के जांच आ इलाज करैत अछि।
2: एहिठाम महिला, स्त्री एवं प्रसूति, पुरुष आ बाल रोग संबंधी जाँच आ इलाज करैत अछि।
4: सेवा आ सुविधा सब
3: 24 घंटा इमरजेंसी आ एम्बुलेंस सेवा, OPD, मेडिसिन सेवा,
4: ऑपरेशन सेवा, चर्म रोग, हार्ट जर्नी, डायबिटीज,
3: होल बॉडी जांच, CT स्कैन, ICU, NICU, OT,
2: डिजिटल एक्सरे, AC, नॉन AC कैबिन के सुविधा है।
4: संपर्क कर जाए
3: यूनिक अस्पताल रुपनी रायपुर आ यूनिक सिटी अस्पताल राजविराज 6 गणेश मंदिर नजदीक।
4: फोन
3: 031-530-7076।
4: मोबाइल
3: 9805-60800 आ एम्बुलेंस के नंबर 9805-56205, 9805-56202।
5: फिरता फिरता 20% समक्या सुफिरता जैले पनी चाहा पनी
6: क्याश फिरता लिनु भएता
7: एनसेल प्याक किन्नु भएता जैले पनी जहाँ पनी प्याक खरीद गर्नुहोस् अनि 20% सम्म क्याश फिरता एनसेल एप मा क्लेम गर्नुहोस्। एनसेल प्याक किन्नु भएता सर्तहरू लागू हुनेछन्। एनसेल नेपालकै लागि।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ सँ बेसी के कारोबार विश्व भरि मे करो मे सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राजविराज मे चल रहल अछि। फिल्म हनुमान अंश,
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश, सब परिवार आबि देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी सँ प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।
0: एखन भोरक FM में रात के 8 बजल।

0: भौजी बहुत टेंशन में छे, की भ गेल?
1: की हेतै देखू ना, केन बॉक्स पलंग खरीद के आनलकै जे नोट कसते कसते सब टूट गेल।
0: सुनू, जय श्री हनुमान ट्रेडर्स में बहुत मजबूत बॉक्स पलंग भेटे छे, खरीद के आन लिया आ वही ठाम सब सामान भेटे छे।
1: ओतो की सब तैयार करे छे यौ?
0: बॉक्स पलंग, थ्री पीस आ टू पीस दराज, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, कुर्सी, अलना, ड्रेसिंग टेबल, बाघ पंजा सोफा सेट।
2: जी हाँ, शादी विवाह आ ऑफिस के लेल संपूर्ण सामान आधुनिक मशीन से कंप्यूटर के डिजाइन अनुसार फर्नीचर तैयार कैल जाय छे।
3: 5x6 फीट के फुल बुटा के बॉक्स पलंग शादी सेट 35,000 आ 6x7 फीट के शादी सेट बॉक्स पलंग 45,000 में भ जायत।
0: संगे मॉडल किचन खरात कार्विन के व्यवस्था छे, पलाय, फर्मेका, रेडीमेड ढोका, हैंडल, हत्था, कांटी, कब्जा, स्प्रिट, चपरा आ शीशा लगायत फर्नीचर के संपूर्ण सामान उपलब्ध है।
2: प्रोप्राइटर शंभू सुथियार।
0: जय श्री हनुमान ट्रेडर्स, राजविराज 1, कंचनपुर रोड, नहर चौक, चूड़ा मिल के बगल में।
2: मोबाइल
0: 9807040070 आ 9868066270।
4: ये दीदी देह भारी छे आ डाँर पीठ से दुखाइए, कौन उपाय करबे?
1: बहुत पुरान आ अनुभवी छे डॉक्टर दिलीप कुमार सा, अपने घर में सेवा दे रहल छे, चलू न ओते जांच करा दे छी।
5: अब अपने भवन राजविराज में गजेंद्र नारायण सिंह सर माथा अंचल अस्पताल में कार्यरत प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार सा, टीचिंग अस्पताल काठमांडू MD।
2: प्रसूति आ स्त्री रोग संबंधी संपूर्ण जांच आ इलाज करैत अछि।
5: सेवा आ सुविधा सब
2: बच्चादानी खसनाई के ऑपरेशन सेवा,
1: गर्भवती महिला जांच, स्त्री रोग, लिकोरिया, महीनाबारी गड़बड़ी, पीठ आ डाँर दुखेनाई, पेशाब जलन, मांस बढ़नाई, निसंतान दंपति के परीक्षण, IUI सेवा, वीडियो एक्सरे,
5: आधुनिक लैब के संगे फार्मेसी सेवा उपलब्ध है।
1: अवश्य सेवा के मौका देल जाए।
5: प्रसूति तथा स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दिलीप कुमार सा, राजविराज, हनुमान नगर रोड, साबिक जन स्वास्थ्य ऑफिस से पूरब, छिन्नमस्ता अस्पताल के सामने दक्षिण साइड।
1: मोबाइल
5: 9861 77985 आ 9817 89133।

0: Media.
1: Extreme energy drink.
2: अपने सबक संग भोरुकवा FM 92.8 MHz।

0: extreme energy drink.
1: अपने सभक संग भोरुकवा FM 92.8 MHz।

0: এখন ভৰকবা এফএম ৰাইতকে ন বাজল राज विराज में आप सब प्रत्येक दिन वरिष्ठ छाला यौन रोग तथा सौंदर्य विशेषज्ञ डॉक्टर रंजू पोखरेल MBBS MD डर्माटोलॉजिस्ट द्वारा जांच इलाज भ रहल अछि।
1: जो एहन कोनो समस्या अछि त नीक आ प्रभावकारी इलाज के लेल अनुभवी डॉक्टर रंजू पोखरेल के क्लिनिक सरिता मेडिकल हॉल में संपर्क करू।
0: याद राखू, सरिता मेडिकल हॉल सरकारी अस्पताल के पश्चिम गेट में।
1: फोन नंबर 9808978।

0: नीम करोली बाबा के जीवनी पर आधारित आ 175 करोड़ से बेसी के कारोबार विश्व भर में करो में सफल फिल्म हनुमान अंश शिव शंकर सिनेमा राज विराज में चल रहल है। फिल्म हनुमान अंश
1: हिंदी फिल्म हनुमान अंश सब परिवार आब देखू आ बाबा नीम करोली के जीवनी से प्रेरित हो फिल्म हनुमान अंश।